आ जेड़ी तेरे कोल किताब है ते तू आखने ए किताब रब दे घर दीआं गल्लां दसदी भाव जेड़ी आ तेरे कोल बाणी दी पोथी है ते जेड़ी तू आखने तुरकी बाणी आई रब दे घर दीआं गल्लां दसदी है ता रब दे घर दी बनी हुई एक बुझारत अज सुलझा दे रब दे घर विच हिंदू चंगा है जा मुसलमान चंगा है सवाल कीता है काजी मौलाना ने गुरु नानक अग्गे भाई साहब भाई गुरदास जी।

पूछा बादशाह, बड़ा आदमी कौन है जिसकी बहुत सी कारें हैं, जिसकी बहुत फैक्ट्री है, जिसके बहुत से बंगले हैं? नहीं, जो संगत के अंदर आकर अपने अहंकार को छोड़ता है वो ही सबसे बड़ा इंसान है।

अभय पद राज अभिखन अधिक करियो ए शब्द भगत नामदेव जी दा उचारे होया। इस शब्द दे विच परमेश्वर दे नाम दी वड़ियाई अते भगतां दे नाल उस परमेश्वर दा प्यार इस शब्द तो भगत नामदेव जी सानू ए उपदेश देंदे ने, ऐ इंसान अगर तू परमेश्वर दा नाम जपेंगा ओदी ओट ओदा आसरा लवेंगा इन्हां भगतां दी तरह ओ परमेश्वर तेरी भी रखिया करेगा तैनू ओ परमेश्वर हर सुख हर वड़ियाई अते अपने नाम दे नाल भी जोड़ेगा और अपने वर्गा बना लवेगा। इस शब्द दे विच अनेका महापुरुषां दा जिक्र नामदेव जी ने कीता है, पर आपां भगत अमरीक दे जीवन बारे विचार करांगे। भगत अमरीक एक बड़े ही चक्रवर्ती और प्रतापी राजे हुए ने। राजे भी सन पर राज कमान दे नाल भगती भी कमाई जिदे सदका अज आपां उन्हां दे जीवन बारे विचार कर रहे हैं। नामदेव जी बयान करते ने अमरीक को दियो अभय पद, भगत अमरीक नु अभय पद की प्राप्ति हुई, जन्म मरण दे चक्कर तू रहत हो गए, राज पवीखन अधिक करियो। जिस तरह पवीखन नु श्री रामचंद्र ने रावण नु मार के लंका दा राज दिता, क्योंकि जेड़ा भी भगत होंदा है उन्नु सुख परमेश्वर दिंदा है। इसे तरह जेड़ा अमरीक भगत है इन्नु भी परमेश्वर ने बड़ी उच्ची पदवी दिती, भगतां दी पदवी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सवैये महल्ले तीजे के जिदे विच अमरीक भगत बारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच इस तरह जिक्र कीता।

कि जिस तरह नाम सिमर के सिद्ध बुद्ध महापुरुष सारे तर गए, नाम नाल लग के इसे तरह अमरीक पवजल तरिया, भगत अमरीक भी संसार सागर तू पार होके

भगत अमरीक बारे भाई गुरदास जी भी बयान करते ने अपनी पौड़ी दे विच अमरीक मोह वर्त है रात पई दुर्वासा आया ए राजा अमरीक जिन्हां दे पिता दा नाम नाम भाग सी राजा अमरीक दा राज मध्य भारत उड़ीसा वाल सी ए राजा अमरीक राज तां करदा है पर राज भाग दे सुख अपने वास्ते नहीं समझदा राज भी कर रहे है पर नाल भगती भी ए दी भगती तो दयाल होके विष्णु भगवान जी ने अपना सुदर्शन चक्र राजा अमरीक दी रक्षा वास्ते हर वक्त इन्हां दे कोल रखिया होया सी कि जदों भी भगत ते कोई पीड़ पवे तां सुदर्शन चक्र नूं ए हुकम सी तू अमरीक दी रक्षा करनी। इस गल दी गवाही भाई गुरदास जी भी भरदे। राजे अमरीक ने वर्त रखे, पूजा पाठ कराया, यज्ञ कराया और दान पुन करने वास्ते बिंद्रावन पहुंचया। बिंद्रावन जिथे कृष्ण भगवान जी रिहा करदे सन, इस जगह आके 6 करोड़ गौवां राजे अमरीक ने दान कीतियां। 6 करोड़ गौवां दे नाल सोना चांदी अनेकां वस्तुआं होर भी दान कीतियां। धर्मी बड़ा सी, नेक बड़ा सी, दान पुन करके ए राजा अमरीक वापस अपने महलां नूं तुरिया। महलां विच आके वर्त तोड़ना सी। वापस आंदे आ रस्ते दे विच दुर्वासा रिखी दा मेल होया। राजे ने दुर्वासा रिखी नूं नमस्कार कीती पर दुर्वासा रिखी क्रोधी बड़े सन। कहन लगे राजन तू इस वेले कित्थों आ रहे। राजा अमरीक कहन लगे मैं बिंद्रावन तो आ रहा और महलां विच जाके वर्त तोड़ना है। मेरी इच्छा है आप जी महलां विच आके चरण पाओ, भोजन छको ता मैं वर्त तोड़ा। दुर्वासा रिखी कहन लगे ठीक है राजन, जदों तक मैं भोजन ना छका तू वर्त नहीं तोड़ना, मैं आवांगा जरूर। इस गल नूं भाई गुरदास जी ने अपनी वार दे विच इस तरह बयान किया है।

अम्बरीक मोह व्रत है, अम्बरीक ने व्रत रखे। रात पई दुर्भाषा आया, दुर्भाषा रिखी आया, अम्बरीक नाल मेल होया, ते हुण पेड़ हस उपारना ओठ नावन नदी सुधाया। दुर्भाषा रिखी नदी ते इशनान करन वास्ते चला गया कि राजन मैं इशनान करके आना, फिर प्रसाद छकांगा ते फिर तू अपना वर्त तोड़ी। अमरीक कहन लगा सत बचत। ए दुर्भाषा रिखी नदी ते पहुंचया, इशनान कीता, पर है ए मन मर्जी का मालिक दुर्भाषा रिखी। चाहिदा तां ए सी इशनान करके जल्दी वापस आ जांदा, पर इशनान करके ए होर नित क्रिया विच रुझ गए। उधर वर्त तोड़न दा समा निकलिया जा रहा। सारिया ने ही विचार कीती कि जापदे हुण दुर्भाषा रिखे नहीं आणगे, क्योंकि देर बहुत हो गई है। अम्बरीक राजा कहन लगा, मैं वचन दिता, जे दुर्भाषा जी ने प्रसादा ना छकिया ते वर्त किस तरह तोड़ा। विद्वान सज्जना नु बुलाया, सारे कहा समा बीता जा रहे, दुर्भाषा रिखी नहीं आया, या तो भुल गए ने या किधरे होर चले गए ने, ते तुसी हुण वर्त तोड़ लो, अन्न ना खाओ, पानी पी लो। सारियां दी सलाह ते भगत अम्बरीक ने पानी पी के ते अपना वर्त तोड़िया। इधर वर्त तोड़िया, उधर दुर्भाषा रिखी आ पहुंचे। भाई गुरदास जी बयान करते ने, चरणों दख पेख, चरणों दख लै पेख, उस श्राप देवन नु ताया। जब दुर्भाषा ने देखा कि इन्हें वर्त तोड़ लिया, तो वह श्राप देन वास्ते तैयार हो गया, अखा गुस्से ना लाल हो गई है। कहन लगा, राजन तू मैनू भोजन छकाए बगैर वर्त तोड़े है, मैं तेनों जिंदा नहीं छड़ना, इहदी सजा देवांगा, श्राप भी देवांगा। राजे ने कहा, महाराज मेरा कसूर नहीं, देर होण कारण विद्वाना की सलाह से मैं वर्त तोड़े, पर दुर्भाषा रिखी ने एक ना सुनी, अपनी एक लिट पुट के वालां दी उन मसल के सुटिया, जिदे विच्चों एक बड़ी भयानक चड़ेल पैदा हुई, जिदे हाथ विच तलवार है। और दुर्भाषा रिखी ने हुक्म कीता, उस चड़ेल नूं जेड़ी चड़ेल अपनी शक्ति नाल पैदा कीती, चड़ेल नूं कहा, ए जड़ा राजा अम्बरीक है, इन्हें मेरा सत्कार नहीं कीता, इन्हें वर्त तोड़े है मेरे आन तू पहला, इस करके तू इसनों खत्म कर।

बहादुर बादशाह रिखी ने हुक्म किया, वह चुड़ेल जिदे हाथ विच किरपान है, भगत अमरीक नूं मारन वास्ते वधी, सारे दरबारी महापुरुष हैरान हो गए कि दुर्भाषा रिखी एक महापुरुष हो के एक केड़ा अधर्म का काम करन लगे। पर ओ परमेश्वर हमेशा अपने भगतां दी रक्षा करता है। ए चुड़ेल मारन वास्ते अगे वधी तां भाई गुरदास जी बयान करते ने, चक्र सुदर्शन काल रूप होए, पिहावल गर्भ गवाया। जिहड़ा सुदर्शन चक्र सी ओ काल रूप होके मौत दा रूप होके दुर्भाषा रिखी दे कोल आ गया। सुदर्शन चक्र ने सारिया तो पहला उस चुड़ेल दी ओ बांह वड़ी जिहदे विच उहने किरपान फड़ी सी, फिर दूसरी बांह वड़ी, फिर सुदर्शन चक्र ने उस चुड़ेल दा गला वड़ के उसका अंत कर दिता। चुड़ेल मर गई ते हुण सुदर्शन चक्र दुर्भाषा रिखी के दुआले हो गया। ते दुर्भाषा रिखी जिहड़ा बड़े हंकार विच गुस्से नाल अखां लाल करके कोल खलोता सी, ओ हुण इन्ना डर गया, ये भी भुल गया कि मैं एक ऋषि हाँ, जे भजांगा तो लोग की कहणगे, पर जान सब नू प्यारी है। ता की होया, ब्राह्मण पढ़ना जियो लै, कि ओ ब्राह्मण दुर्भाषा रिखी हुण भज पिया कि किसे तरह अपनी जान बचावा। ब्राह्मण पढ़ना जियो लै, रखिया ना हंगण देव सुभाया। हुण कोई भी देवी देवता इहदी रखिया करन नूं तैयार नहीं, क्योंकि जिन्हों भगवान मारे उहनूं फिर कौन बचावे। इह दुर्भाषा रिखी अमरीक दी सभा विच भजिया, इंद्र लोक चला गया। कहण लगा इंद्र देवते नूं, मेरी जान बचा। पर इंद्र कहण लगा, ए मेरे वस दी गल नहीं। ता दुर्भाषा रिखी शिव लोक नूं चल पिया। शिवजी भगवान कहण लगे, हुण मेरे भी वस दी गल नहीं। दुर्भाषा रिखी हुण ब्रह्म लोक नूं गया, ता ब्रह्मा जी कहण लगे, तेनूं बचाणा हुण मेरे वस दी भी गल नहीं। ता फिर दुर्भाषा रिखी बैकुंठ नूं चला गया, विष्णु भगवान दे कोल। ता विष्णु भगवान कहन लगे कि मवी तेनू नहीं बचा सकता। भाई गुरदास जी इस गल की गवाही देंदे ने, इंद्र लोक शिव लोक तज, ब्रह्म लोक बैकुंठ तजाया। सारियों पासियों इसनू आसरा जदू ना मिलिया, दुखी हो गया दुर्भाषा रिखी के सुदर्शन चक्कर मेरा पिछा नहीं छड़दा। ता उस वक्त देवतियां भगवान सन, सिख दे सबना समझाया। देवतियां ने अते भगवान विष्णु ने सारिया ने सिख दे ए सिख्या दिती, सबना समझाया, सारिया ने समझाया है कि दुर्भाषा तू भगत नू बुरा के, तू भगत नू दुख देना चाहे, इस करके अगर वो भगत चाहेगा ताई तू बच सकेगा, नहीं ता तेरा बचना बड़ा औखा है।

ओ परमेश्वर किस तरह उन्हें भगत अमरीक की रखा की ना उन्हें दे ठाकर देवी सुदामे त्रू अटल अज हूं टर अमरीक की तरह सुदामे ते कृपा की ध्रुव भगत ते कृपा की भगत हेत मारियो हरनाकश भगत वास्ते नरसिंह का रूप बना के हरनाकश का अंत किया नामा कहे भगत बस के सब अज हूं बल के द्वार करो। नामदेव जी कहते ने केसव परमेश्वर नू के सोने केसां वाला परमेश्वर ये ओ जिहड़ा परमेश्वर है ओ भगतां दे वास है इस वास्ते तां अज तक ओ बल राज दे द्वारे ते खलोता होया है। तो गुरु साहिब जी भी बाणी विच कहिंदे ने भाई अमरीक ने सिमरन कीता राजा होण दे नाल राज भी कमाया ते सिमरन भी ते अभय पद नू प्राप्त हो गया। आओ भाई तुस भी सिमरन करो दुनिया दे काम कार करदियां अते अपने जीवन नू

लोगन से मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सगल से मौला, अलिप्त रहो जैसे जल में कौला, मुख की बात सगल से करता, जी संग प्रभु अपना धरता, दीस आवत में बहुत भियाला, सगल चरण की एहो मन राला, नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया पूरा।

समझदार सोजी वाले आ, एक होर रस भी है जिन्हों नाम का रस कहते हरी का रस कहते होर बड़े स्वाद तू वेखे हो मालक ने बड़ी प्यारी रचना बनाई साढ़े जेड़े ज्ञान इंद्रे ने ना पांच ज्ञान इंद्रे फाइव सेंसेस अखा वेख दियां जीभ चखदी कान सुनदे ने नक सुंघदा है शरीर दी त्वचा शरीर दी स्किन जो है छो के पता लाउंदी आला दुआला की है लेकिन इहदे नाल इक होर भी गल है इन्हां पंजां ही ज्ञान इंद्रियां च मालक ने रस भी पा छड़े स्वाद भर छड़े अखां वेखदियां भी ने वेखण दा रस भी लैंदियां जे तां नजारा वधिया है ते अखां रस लैंदियां ते जे नहीं तां फिर मूँह दूजे पासे भी हो जांदा जे सुनी जाण वाली आवाज सुरीली है रस विच है सुर विच है ते बंदा ध्यान नाल सुणदा है बल्कि हमा तन गोश सारा शरीर कानी बन जाता है पूरा ध्यान पर जे वह आवाज बेसुरी हो ते कन्ना चुंगलां भी दे लेता अण पौंदा शोर होवे ते नहीं भी बर्दाश्त होता इस तरह सुंघण की शक्ति कदे बदबो भी लैंदी ते दुखी भी होंदी खुशबू नाल सुखी भी होंदी जीभ ते कुछ कौड़ा आ जावे ते थू थू भी बंदा करदा है कुछ स्वादला आ जावे ते अखां भी बोलदियां ने रस आए इन्हां पंजां ज्ञान इंद्रियां विच ही रस मालक ने भरे ये नखेड़ लेंदे ने रस देने वाली केड़ी केड़ी वस्तु ते फिर उस रस पिछे स्वाद देने वाली शय पिछे कई बार बंदा कमला भी हो जाता इथों तक कमला होया बंदा कई बार इन्हां रसां पिछे सुन दे रस पिछे सुंघण दे रस पिछे वेखण दे रस पिछे छोण दे रस पिछे चखण दे रस पिछे इन्हां स्वादां च कई बार बंदा इन्ना कमला हो गया जानवरां तों भी थले जा पे पावन बाणी च बचना है मृग मीन भृंग पतंग कुंचर मृग नूं हिरण नूं कन्ना दा रस है मच्छी नूं जीभा दा रस है भंवरे नूं सुंघण दा रस पिया है फुल दे विच बैठा बैठा विचे ही शहीद हो जांदा फुल मीटिया जांदा विचे खत्म हो जांदा पतंगा अखां दे रोग दा मारिया है इहनूं वेखण दा रस है ज्योति उत्ते सड़ मरदा है पर महाराज कहिंदे ने देखो कैसी गल है मिर्ग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश इन्हां नूं एक एक स्वाद पिया है ते पंच दोख असाद जामे बंदे नूं तां पंजे पंजे कट्ठे भी लगे होए तां भी तां की केतक आस इहदा किवें बचाओ असल गल यह है कि बंदे नूं अंदरला रस नहीं आया एक आत्म रस भी है साहब कलगीधर पातशाह ने वचन किया साहब कहिंदे ने

सच्ची वडियाई आद और अंत तो ए गुरु दी वडियाई चली आ रही जिसनू के पट्टा ने भी बाणी दे विच फरमान कीता है के बसंत दी रितु दे विच जो खिड़े हुए फुल हन सारे संसार दे विच और समुंदर दे विच चल रहिया जो लहरा हन एना नू कोई गिन नहीं सकता। फिर भी जे कोई शिवजी दी तरह ध्यान करके बैठ जावे ते गुरु पासों बख्शा प्राप्त कर लवे ते एना पैंदियां हुईयां बारशां दियां बूंदां दी गिनती कर भी लवे संसार दे विच जितने भी फुल हन उन्हां दी भी गिनती कर लवे ते समुंदर दे विच चल रहियां लहरां दी भी गिनती कर लवे मगर जो गुरु दे गुण हन उन्हां गुणां दी गिनती करनी असंभव है। पट भी फरमान करते हैं

जयकार करता है। इस जय जयकार दे पिछे इको ही गल है जो राज दी है, क्योंकि गुरु तो बिना होर कोई ऐसा नहीं जो प्राणी मात्र लई मुकत दा द्वार खोल सके। नौ दरवाजे दसवां द्वार बुजरे ज्ञानी एहो विचार, एहो ही ब्रह्म दी विचार है, और जेड़ी विचार गुरु तो बिना होर कोई दे नहीं सकदा। साहिब फरमान करदे हन, गुर कीनो मुक्त द्वारा सब सृष्ट करे जयकारा, क्योंकि दुनिया विच कोई किसे दी एक दिन दो दिन महीना जा सालां बदी मदद कर सकदा है, मगर परमात्मा जो है ओ गुरु राही इस संसार दे विच आके सारे संसार नू फिर परमेश्वर दे नाल जोड़दा है। साहिब फरमान करदे हन, क्योंकि गुरु ही है जेड़ा दोबारा इस मनुख नू परमात्मा दे घर तक पहुंचा सकदा है, और ऐसे दा ही साथ सच्चा है, जो सच्चे गुरु दा साथ करदा है ओ ही सच्चे परमात्मा नू पा सकदा है। साहिबां दा फरमान है।

मेरा रूप बिगड़िया होया भयानक है। मुबारक है जो बंदे नूं अपने आप को डर लगन लग पवे ना, वो समा मनुख दे बदल जाने वास्ते बड़ा मुबारक है। मनुख दे चंगे बनन दे दिन आए समझो। जिस दिन बंदे नूं अपने अंदर फैले हुए औगण नजर आ जाण, धन गुरु नानक ने उन्हां औगणां ते सट नजर पवाई। कहिंदे मैं वेखदा, भाव धन गुरु नानक दे इस शब्द द्वारा असी वेखना है अपने अंदर, ते देखना है सारा कुछ, बहुत कुछ नजर आ जाएगा। जी सारा कुछ नहीं तो बहुता कुछ नजर आ जाएगा। एक स्वान दो स्वानी नाल, एक तां मेरे अंदर कुत्ता भौंक रहा है, उहदे नाल दो कुत्तियां भौंक रही ने। लोभ कुत्ता, आशा ते तृष्णा उहदे नाल रलियां हुई कुत्तियां। हर अमृत वेले हर दिन चढ़ते पलक, पलक लफ्ज जिहड़ा है इहदा अगर आपां बिल्कुल सही लफ्ज अर्थ वास्ते लभीए, अंग्रेजी चा पट्टू मारो कह सकते। अगला चढ़दा दिन, हर अमृत वेला हर चढ़दा दिन, जिस वेले मैं भगती दे मार्ग ते तुरना चाहना, मेरे राह विच भौंक भौंक के मैनू ये परेशान कर दे लोभ तृष्णा ते आशा। इन्हां दे भौंकण दे नाल मेरे अंदर हलचल पैदा हो जाती, पलके भौंकै सदा बयाल, बड़िया भयानक आवाजा कढ दे। कूड़ छुरा मुठा मुरदार, पुराने समयां च कुछ लोग जंगली कबीलियां च ऐसे भी हुंदे सन जिहड़े ना तां लिबास चंगा रखदे सन, ना उन्हां दे खाण पहनण पीण दी मर्यादा सी कोई, ना उन्हां दे डेरियां ते कोई समाजिक मर्यादा ही सी। जो मिल गया मार लिया खा लिया, जिन्हू वेखिया लुट लिया। आम तौर ते साडे लोग सासियां नूं भी ऐसा करके जानदे रहे ने, हालांकि सासी कौम कुछ होर सी। ये राजपूतां दे वह लोग सन जिहड़े साहस करके हिम्मत करके बागी हो तुरे सन, पर क्योंकि थां थां फिरदियां होइआं इन्हां लोकां ने भी चज नाल कोई टिकाणा ना बनाया, इन्हां दी मर्यादा भी खाण पीण पहनण दी कोई चंगी ना रही, ते आम तौर ते समाज च इन्हां नूं भी उसे निगाह नाल वेख्या जाण लग पिया। जिहड़े असभ्य लोग सभ्यता रहित सभ्यताहीन लोग साडे समाज च पसरे होए सन, जिहड़े किसे समाज नूं किसे इंसानियत दे कानून नूं मनण नूं तैयार नहीं, गलत खाण पीण गलत काम करन वाले, ते फिर लोकां नूं लुट्टण मारन जो कुछ मिल जाए आम तौर ते बिल्ले न्योले जो कुछ मिल गया सब खा लैंदे सन। हुण ओह छुरा भी रखदे सन, तीर भी रखदे सन, हथियार रखते सन, हालांकि वीरता दी निशानियां शस्त्र कोल होना बहादरी का निशान है, लेकिन उन्हां वास्ते जिन्हां परपकार वास्ते वरतना वे जिवें तुहानू महाराज ने बख्शे, ते जिहड़ा पराए बुरे वास्ते किसे दा नुकसान करके किसे नूं तड़फा के उहदे च स्वाद लैण वास्ते हथियार वरते जाण, ते फिर बड़े भयानक हो जाते। महाराज कहिंदे ने मेरे अंदर कूड दा छुरा मैं लक नाल बने। हराम खाना, क्योंकि महाराज ने पावन बाणी च बड़ा स्पष्ट किया है, हक पराया नानका उस सूअर उस गाय। मुसलमाना वास्ते जिस तरह सूर हराम है, हिंदुओं वास्ते जिस तरह गां दा मांस हराम है, इसे तरह किसे दे हक ते निगाह रखनी, किसे दा हक मार के खाना, जिवें इन्हां दोहां कौमां वास्ते इन्हां दो चीजां नूं हराम मनिया गया है, इसे तरह इंसान वास्ते पराया हक हराम है। ते महाराज अगों इह भी कहिंदे ने, गुर पीर हामा तां भरै जां मुरदार ना खाए। जे इह हराम दा मुरदार बंदा नहीं खांदा तां गुरु पीर भी बांह फड़दा, ते जे बंदा कहे मैं गुरु का भी बनिया रहां, गुरु की सांझ भी बनी रहे, ते मैं हक हलाल की बजाय लोगों का मार मार के खांदा रहां, ता गुरु वालों हामी भरे जान की कोई गुंजाइश नहीं। महाराज कहिंदे ने इस तरीके दे नाल मेरे अंदर हक पराए की निगाह जिहड़ी है वह एक मुरदार खाण वाली गंदी बिरती। इस तरह मैं बड़ा मारखोरा भयानक रूप लैके फिर रहा, मैं पत की पंध, मैनू अपनी इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं,
ना करनी की कार मेरे अंदर आचरण दी रहनी दी कोई लकीर नहीं कोई हद नहीं। तेरा एक नाम तारे संसार एक आसरा है कि इस भयानकता तो अपने आप तो लगते डर वाली अवस्था तो इस संसार तो तेरा नाम मैं बचा सकता। ऐसे आसरे मैं एहा आस एहो आधार आस ला के बैठा एक नाम दे आसरे शायद मेरा जीवन बदल जा। मुख निंदा आखा दिन रात मैं लोगों के औगण कढ़ के ये सच करके जानना जिन्ना चिर बंदा दूजिया के औगण कढ़ता रहे अपने औगण ते निगाह ही नहीं पे ते जिन्ना चिर अपने औगण ते निगाह ना पवे बंदा ठीक किवें होवे। धन गुरु हरराय साहब सच्चे पातशाह के पावन दरबार च आप जानते हो साहबां दे पास बहुत वड्डा चिकित्सालय सी दवाखाना सी लगभग उस वेले पसरिया मोटिया मोटिया सब बीमारियां दा इलाज महाराज सच्चे पातशाह दी निगरानी हेठ होया करदा सी। बड़े बड़े तकड़े सियाने हकीम वैद महाराज ने सेवा च लाए हुए सन ते हर तरह की जड़ी बूटी दवाई जो उस वेले मिल सकण वाली चीज सी वरती जा सकण वाली चीज सी महाराज ने अपने दवाखाने कच कीती सी। इथों तक भी दस्या गया है एक बार दिल्ली दरबार विच भी एक बहुत वड्डे आकार की हरण की लोड़ पै गई सी हकीमां ने कह दिता ते महाराज के दवाखाने बिना होर किधरों नहीं सी मिले। वो एक प्रेमी का मंजा चुक के लियाए घर दे बंदे लिया के वह मंजा रखिया वो कहिंदा मैनू महाराज को लै चलो। मरीज जो है रोगी कहिंदा मैनू महाराज के बूहे ते लै चलो। वो कहन लगे तेनू दवाखाने विच हकीमां ते वैदां दे हवाले करना है महाराज के दर्शन तू तगड़ा होके कर ली महाराज इत्थे भी आउंदे ने दर्शन बख्शदे ने। सतगुरु पातशाह उन्हां रोगियां नू आके नाम जपन निरंकार नाल जुड़न दा उपदेश भी नाल नाल देंदे रहिंदे सी दवा दारू भी चलदा रहिंदा कहिंदा नहीं मैनू हुणे लै चलो महाराज एक बारी मैनू वेख लैण। सियाणियां ने बहुत कहा तेनू वैदां ने वेखना हकीमां ने वेखना महाराज दे दर्शन करने ने नहीं महाराज मैनू वेखण जिद कर बैठा। रोगी की जिद बड़ी होंदी उन्हें क्या चलो कोई नहीं लै चलो मंजा चुके महाराज के बूहे ते लै आए। दरबार ने कहा सतगुरु आराम फरमा रहे ने विश्राम कर रहे ने हालांकि सतगुरु ने कहा विश्राम करना उन्होंने विश्राम विच भी भगती ते समाधि है उन्होंने इकले हो जाने विच भी समाधि है जपन है सिमरन है पर उपकार की भावना के कुछ व्यवंता हो पर नहीं उसने क्या विश्राम कर रहे ने एक कहन लगा मैनू इत्थे प्यार रहन दिओ जिस वेले वो बाहर निकल गए मैनू एक बार वेख लैन फिर मेरा दवा दारू शुरू करे। आवाज अंदर भी पहुंच गई महाराज ने पूछा क्यों बई की गल है दरबार ने दसिया महाराज रोगी आया वो कहिंदा पहला महाराज मैनू वेखण फिर मेरा इलाज शुरू करो। महाराज पातशाह आप बाहर आ गए धन गुरु हरराय साहब बाहर आ गए जिस वेले साहिबां दे दर्शन होए वो जिहड़ा पासा नहीं सी लै सकदा ना पिया पिया सज्जा खब्बा पासा नहीं सी मोड़ सकदा सारा शरीर गलिया पिया सी। वैदा हकीमां ने जिसके बारे जवाब दे दिता होया सी महाराज नूं वेखदिया सार छेती नाल उठण दा जतन करन लगा साथियां ने क्या प्यार हो महाराज ने भी इशारा कीता मगर उठ के बैठ गया मंजे ते उठ के थले उतरन लगा महाराज कहन लगे टिक जा की चाहुंदा है कि कहिंदा बस महाराज मैं यही चाहुंदा सा तुसीं मैनूं वेख लो। साहिबां ने मुस्कुरा के उही गल कही भलिया लोका तैनू वेखण के वैद हकीम दवाई देणगे तू ठीक हो जाएगा आ गए तो हुण तैनू ठीक करके तोरांगे साडे वेखण वाली केड़ी गल है सिर नीवा करके कहन लगा महाराज वह मैनू बाहरों वेखणगे मलमा ला के ठीक करके तोर देणगे मेरे अंदर किन्ना कोड वरतिया जिहड़ा फुट के बाहर आ गया तां तुहानू ही दिसना वैदा हकीमां नूं कोई नहीं दिसना किस काम क्रोध ते गंध ने मेरे अंदरों मैनू रोगी कीता ते ओह रोग मेरे बाहर चमड़ी ते आ गए ने ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹ ਵੈਦਾਂ ਤੇ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬਾਹਰੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਗੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੇ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਰੋਗ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਇਹ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੱਤ ਕੀ ਪੰਧ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਾਰ ਹੋ ਵਿਗੜੇ ਰੂਪ ਰਹਾਂ ਬਿਕਰਾਲ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ
तेरा एक नाम तारे संसार मैं एह आस एह आधार मुख निंदा आखां दिन रात इस मूह नाल मैं लोकां दी निंदिया करदियां जिंदगी बिता रहा दिन रात लोकां दियां बुराइयां कढ़ियां पर घर जो ही नीच सनात मैं बड़ा नीच ते कमीना हां कि मैं लोकां दे घरां विच वेखना ध्यान देना लोकां दे घरां वल वेखना आम तौर ते बाणी विच इस सेंस च लिया गया है इस भाव च लिया गया है जेड़ा कोई स्त्री किसी दे मर्द वल वेखे या कोई मर्द किसी दी स्त्री वल वेखे लेकिन केवल शरीरां तक दी गल नहीं है एक कामी पुरुष अपने घर वल ना वेखदा होया किसी दी इज्जत वल वेखदा है बहुत माड़ी गल एक स्त्री अपने पति दी धर्म पत्नी ना रह के ईमानदार ना रह के किसी मर्द वल मैली निगाह नाल वेखे इस नूं पर घर जोना कहिंदे ने पराए घर वल वेखना लेकिन साडे लोकां दी निगाह इत्थे ही थोड़ा टिकी असीं धन भी लोकां दे घरां दा वेखणे आ वड़ियाईयां भी लोकां दे घरां दीआं वेखणे आ जो कुछ किसे दे घर च नजर आउंदा है उत्थे ही साडी लोभ दी निगाह टिकी हर चीज ते साडी निगाह मैली हुंदी चली जांदी साहिब कहिंदे ने इस तरह मेरी निगाह लोकां दे घरां विच पै रही पर घर जो ही देखदा हां लोकां दे घरां विच वेखदा हां बड़ा नीच ते कमीना बणे काम क्रोध तन वसे चंडाल ये तुसी भी जानते हो कि आम तौर पर बंदा कातल ते खूनी उदों बनता है जदों ये लोभ दे वस होवे काम दे वस होवे क्रोध दे वस होवे ये खराबियां बंदे कोलों बहुत गुनाह कराउंदियां हैं साहिब कहिंदे ने इन्हां चंडालां ने मेरे कोलों बड़ा नुकसान कराया अपना भी पराया भी इन्हां चंडालां ने मैनूं नेक इंसान नहीं बन दिता नहीं रहन दिता तानक रूप रहा करतार फाही सुरत मलूकी वेस कई बार ऐसा भी होया है कि वह तो लोग जिन्हां दी गल महाराज ने जिक्र किया इत्थे वह लोग तो बाहरों भी गंदे रहिंदे सन सफाई बाहरले जीवन की भी नहीं रखते बाहरों भी मर्यादा नहीं रखते पर कई बार ऐसा भी होया है कि आम बंदियां ने बाहरों जे बहुत सोहना साधा वाला वेस धारण बना लिया संतां वाला वेस धारण कर लिया साहब कहिंदे ने ऐसा भी होया फाही सुरत दिमाग विच तां इह है कि मैं लोकां नूं फसावां किस तरह लोग फसन किस तरह मेरी फाही विच किवें आउण मैं लोकां नूं किस तरह अपने चुंगल च लै सकां मलूकी वेस बाहरों मेरा नेक इंसानां वाला साधां वाला फकीरां वाला वेस है औ ठगवाड़ा ठगी देस मैं ठग लोकां नूं ठगण ते लगा होया खरा सियाणा बहुता भार उंज तां लोकी मैनूं सियाणा समझदे ने मैं अपने आप च सियाणा बणदा वी बहुता मगर ठगी ते पाप दा भार मैं अपने सिर ते वधाई चलिया जा रहा तानक रूप रहा करतार मैं कीता ना जाता हराम खोर मालक तेरियां रहमतां ते बख्शिशां दा मैं शाकर ना होया शुकराना ना कीता किरत कण बन गया जेड़ा बंदा किसे दा लै के किसे दा खा के फिर उहदा वी बुरा चितवे उस नूं हराम खोर कह देने आ खा के हराम करन वाला या बिना कीते खाण वाला बिना कुछ कीतियां दे खा के डकार मार जाण वाला बंदा उस नूं हराम खोर कहिंदा जिहड़ा हलाल नहीं करता खाधे होए नूं जो कुछ उस नूं प्राप्त है उहदा हक अदा नहीं करता साहिब कहिंदे ने मैं तेरियां दातां दा शुकराना ना कर सकिया ना मैथों कुछ घाल होई ते ना मैं तेरियां बख्शिशां दा शुकराना कर सकिया बल्कि तैथों बेमुख होया रहा इस तों वड्डा हराम खोर होर की होवे मैं कीता ना जाता हराम खोर हूं क्या मुंह देसा दुष्ट चोर मैं तेरे बूहे ते तेरे दर ते उते आके की मुंह विखावांगा मेरे अंदर किन्नी दुष्टताई ते किन्ना चोरां वाली गंदी बिरती है मेरे अंदर पल रही नानक नीच कहे विचार तानक रूप रहा करतार मैं निमाना मैं नीच एक विचार दे रहा हां कि मैं चंगे रूप च नहीं रह रहा मैं कोई चंगा जीवन बतीत नहीं कर रहा धन गुरु नानक का यह शब्द साहबां दी यह बाणी सानू अपने अंदर झात पाउण वास्ते एक बहुत प्यारी रोशनी है ते मनुख नूं जे अपने अंदर यह रोशनी मार के अपने

जन्म ही उस ईश्वर की प्राप्ति हुई है। साथ संगीत बोलो श्री भाई साहब भाई गुरदास जी अपनी बाणी।

दुर्योधन की सभा के विचकार अपनी लज्जा बचाउन वास्ते प्रभु नु याद कीता, एक मन एक चित होके त्याया उसनु। ता फिर जो परमेश्वर का नाम जपदे हन उना दी लज्जा वाहेगुरु आप रखदा है। साथ संगत बोलो श्री। तीसरे प्रमाण विच भाई साहब कहते हैं, वो गरीब ब्राह्मण सुदामा जो मित्र सी भगवान श्री कृष्ण जी का, जो थोड़े जिहे चावल लैके द्वारकापुरी पहुंचया तो उसके बदले भगवान श्री कृष्ण जी ने उस भेटा दे और सुदामे दे प्यार दे सदके उसनु दुनिया का बेअंत धन बख्श दिता। सुदामे नु नौ नीतियां 18 सिद्धियां दे दी। चौथे प्रमाण विच भाई

पहला मार्ग पहला रास्ता पहली जुगत। सतगुरु कृपा करदे ने साहिब धन गुरु अर्जन पातशाह साहिब कहिंदे ने प्यारे आ कदी मच्छी नू वेख लै उहदा पानी नाल किन्ना प्यार है उहदा जीवन ही पानी है। एक खिन भी ना धीरे एक पल एक क्षण भी ओ नहीं रह सकती दे जे पानी विचों कटदे हो ते भाई उहने मर जाणा है। जे तेरा प्यार इदां दा हो जाए गुरु नाल इदां दा सुने किते तू गुरु नाल कर लवें ते तेरे जीवन विच पलटा ना आ जाए। साहिब कहिंदे ने

दूसरा रास्ता दूसरा मार्ग ते दूसरी जुगत साहब सानू दसते ने किते जातक नू वेख लै पपीए नू वेख लै जेड़ा स्वाति बूंद दे पिछे पपी पपी प्या करदा साहब बाणी विच कहिंदे ने

शैव फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साईं है। एक पल भी नहीं विछड़दा त्यारिया, पाछा तू मेरे ते कृपा कर, किड़ी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मीह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याछा हजूर।

गुरु नानक दी मोर ला के धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गावां बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साईं कितने गुण गायन करन हजूर बाणी विच कहिंदे ने

साहब जी रचना ते इको ही है लेकिन तेरे गुण बहुते ने। भगत कबीर जी महाराज उस मालिक दे गुणा दा अथाह बयान करदे होए अपने रचना तो कृपा करदे ने ते आंदे ने।

धन गुरु अर्जन पातशाह। साहब अपने मुखार बिंद तो आंदे ने एक घड़ी दिन समो को बहुत भयारे, ए मेरे मालिका एक घड़ी भी एक पल भी, तेथों जे मैं बिछड़ जाना ते इंज लगदा है कितने ही जुग बतीत हो गए ने, कितना समा लंघ गया।

गुरु दा प्यारा मेनू मिला दे, कोई ऐसे गुरु दे प्यारे नाल मेल करा दे कि तेरे दर्शना दी जड़ी आस लगी हुई है वो मिट जावे। आओ भाई अरदास करिए, गुरु चरणा विच तरला करिए। गुरु अर्जन पातशाह साहब अपने रसना तो आंदे ने, मन ऐसा नहीं हो करे, ऐसी प्रीत कर लै जिवें मछली ने पानी नाल कर ली, चात्रक ने पबीए ने स्वाती बूंद नाल कर ली है, भंवरे का प्यार फुल दे नाल है, सुगंधी नाल है, जिहड़ी प्रीत कदी टुटे ना पातशाह मेरा मालका एहो जी प्रीत कर, एहो जी कृपा कर, मेरा मन भी तेरे चरणा नाल।

धुर की वाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। दयाल पुरख मेहरवाना हर नानक साच बखाना।

0: गुर शब्द निवासा,
1: अमृत जुगे गुर शब्द निवासा।
0: सर्वर हंस धुरे ही मेला, सर्वर हंस

नौजवान कहने लगा, मेरे नाल ऐसी बीती कि मर्दा मर्दा में बच के आ गई। मैं आख्या ये मर्दा मर्दा बच के आए, वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। जदों सिख सोचन लग पैंदा है मैं हुण बचना है, ते गुरु दे सिक्खी नूं तलांजलि देनी शुरू कर दिंदा, गुरु नूं पिठ देनी शुरू कर दिंदा। ते मैं क्या वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। गुरु कलगीधर दे सन्मुख रवी, गुरु तो बिना किसे कम नहीं आना। भाई गुरदास सिंह जी कहंदे

कलयुग दे महान अवतार उन्हां दी वड्याई भाई साहब भाई गुरदास जी सिख धर्म दे महान विद्वान उन्होंने अपनी कलम नाल कीती है। बड़ा सुंदर ये प्रसंग

जिथे भी कोई रब तो भुलिया इंसान, गुरु नानक बाबा नू नजर आया, सतगुरु उथे आप पुजे। संसार दी रीति है भई महापुरश वली पीर पैगंबर उन्हां कोल दुनिया जांदी है, पर गुरु नानक सच्चा पातशाह आप लोगां कोल जांदे रहन। बाबा काशी गए, बनारस गए, हरिद्वार गए, गया जी गए। क्यों गए? भई लोगां दा तीर्थां ते इकट्ठ हुंदा सी ते बाबा जी उत्थे अपने विचार सुणांदे सन, लोगां नूं सीधे मार्ग ते लांदे सन। बटाले दे लागे बिल्कुल नजदीक, क्योंकि बटाले विच गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे सौरा परिवार सी, ते लागे अचल बटाला है। उह सिद्धां दा बहुत वड्डा गढ़, शिवरात्रि दा मेला लगा होया सी, ते गुरु नानक ने सुनहरी मौका तकिया, कहण लगे मरदाने आ चल। गरीब नवाज पातशाह सत बचन, पाई साहब भाई गुरदास

लगी बरसन लक्ष्मी। बाबे दा आना सुन के सारे लोग उधर नू आ गए जिधर गरीब नू आज पाछा बैठ।

जिस वेले भगतिया ने तकिया भी जिदे विच लोक माया पा रहे ने ओ लोटा किधर चला गया ते भाई साहब कहंदे ने ओ भगतिया नू ओ भगत पाउणी भुल गई ना उताल रहा ना उराग रहा।

जिस वेले बंदे नू अपनी हार हुंदी दिस पवे ना, ए आम बात है, फिर वो झगड़े ते उतर आंदा है, और तां पेश जांदी कोई नहीं। जोगियां ने गुरु नानक बाबा नाल बहस करनी शुरू कर दी। भाई साहब भाई गुरदास

तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने, तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने। जिसनु कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाने, तेरे भक्तों को बलिहारा खान सुहावा सदा प्रभु तेरा। रंग तेरे अपारा, रंग तेरे अपारा, खिन में अवर खिने में अवरा अचरज।

जे तू मेरे हिरदे विच्चों विसरजन जाए, जदों तू मेरे हिरदे विच्चों विसरदा है उस वेले मेरी आत्मक मौत हो जाती। तू विसरे ता सब को लग, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सारे हावी हो जाते हैं उदों जदों तेरी याद विसर जाती है मेरे हिरदे विच्चों। इस वास्ते मेरी अरदास है पातशाह तू मेरे चित विच्चों कदे ना विसर, हर वेले मेरे अंतस्करण विच वसदा रहे। सतनाम श्री वाहिगुरु। असां कलजुगी जीवां दे उद्धार हित अपने निज स्वरूप अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरणां विच गुरु अर्जन देव पातशाह अरदास।

भी ऐसा होना चाहिदा है जिस पासों जदों भी जरूरत होवे मंगया जावे ते मिल जावे। ओ शाह कैसा के जो जरूरत दे समय कम ना आवे। ते साई फरमान करदे हन कि ऐसा शाह इको एक परमात्मा है जदों भी उस पासों मंगया जावे ओ मंगा पूरियां करदा है। ऐसे परमात्मा बारे ऐसे शाह बारे साई फरमान कर रहे हैं।